साधो मन का मान त्यागो मान त्यागण दे लई मन त्याग मन दे विच आउंदे इच्छावां दी पूर्ति दे लई असी की कुछ करते हैं जबकि हुण जिंदगी ये बन गई है कि साढ़े आपसी रिश्ते परिवार साथ सब कुछ टुटता नज़र आ रहा है असी घूमण फिरन जाना तरजीह दें तो अगला भी वड्डा सवाल ये खड़ा हो गया कि असी कल्ले घूमण फिरन तरजीह दे के अपने मन दियाँ खुशियां लभ रहे हैं सोलो ट्रैवल के नाते तुसी बहुत कुछ देखा होगा बहुत लोग अपने आप को इस ट्रैवल के नाम से आवाजाई जाना अपने आप को तलाशन की गल करते हैं जिंदगी का सच जो सानू हुण तक ख्यालों के मिल रहा है जो सानू साढ़े शास्त्रां दे विच मिल रहा है जो साड़ा उच्च ज्ञान विरासत है वह सानू यही दसती है कि असी जीना किवें है दरअसल साढ़े अंदर दो धारी तलवार की तरह काम हुंदा है एक तो असी उस ताकत और शोहर के नशे नू मनना चाहते हैं हुण ताकत कई लेवल पद्धर की हुंदी है कोई वड्डे अहुदे ते बंदा बैठा होवे उसनू अपनी कुर्सी की ताकत हुंदी है उसका रंग ढंग बोलन सलीका पहन का तरीका इसकी गवाही दिंदियां ने किसी नू अपने पैसे की ताकत हुंदी है पर उसकी ताकत की गवाही महंगे बूट घड़ियां कारा कोठियां टैलीफोन लैके शो करने की कोशिश करता है अजिहे बंदे अक्सर दुनिया के दूजे बंद वेखते हैं जिमें कोई बंदा ना हो सच तो यह मनिया जाता है कि बंदे की असलीयत देखनी हो जो वह ताकत के नशे में हों तो वह देखता है कि मैं की कर सकता हाँ कहानी तो पुरानी जमाना अकबर बीरबल के जमाने भी सुनते हैं कभी कभी उन्होंने मैं किसी होर परपक्ष भी वेखदा हाँ राजे बेहद भुख लगी सी वो रसोईए ने उन्होंने बैंगणा की सब्जी बनाई राजे भुख लगी सी बैंगण खा के बहुत खुश होया हूँ जो खाना उदो स्वाद लगता जो असी भुखे होइए उसने हुक्म दिता कि हर रोज़ बैंगणा की सब्जी बनाई जाए बीरबल लागे खड़ा सी अकबर दे कहिंदा जनाब वेखो ना सब्जी किन्नी वधिया है रब ने बैंगण दुनिया की सब तो वधिया सब्जी बनाई है कहिंदे इहदे नाल उम्र भी बंदे दी लंबी हुंदी है कई बीमारियों तो बचाउंदा ते वेखो कुदरत ने उहदे सिर ते ताज भी दित्ता होया सो राजे दा हुक्म सी सब्जी रोज़ बन लगी तीन चार दिन तां उह खा गया पंजवें दिन जदों राजा मूहरे बैंगण आए तो उसनूं गुस्सा चढ़ गया उहने कहा हर रोज़ बैंगण चुको इसनूं मैनू तो यदि शक्ल वेखनी पसंद नहीं बीरबल साहब बोले जनाब बैंगण भी कोई सब्जी है इस तो घटिया और कोई सब्जी नहीं रंग वेखो यदा कि काला कलूटा है राजा कहता और तू तो यदि तारीफ बड़ी करता सी ओ मैं क्या जनाब तुसी ये देखो भी ताकत कि हथ में है तुहाडे कि बैंगण दे सो मेरी गल करने का मतलब यह है कि ताकत पैसे की होंगी है सरकारी अफसर अपने अहदे ताकत समझदा है तो सियासी नेता ताकत कुर्सी करके नहीं छड़ता वरना जड़ा कुर्सी पर बहज छड़ मनुखता की सेवा करना भी मैनू लगता हों कई बार असल बहाने होंगे है साढ़े आले दुआले किनिया गैर सरकारी संस्थाव बनिया ने कि असी उन्होंने लिए पैसा भी इकट्ठा करते हैं पर कि ना कि शोहरत और हमदर्दी की फल लैके असी तरक्की वाल जाना चाहते हैं मनो भावे ना ताकत दूजे का विगड़िया हुआ रूप तानाशाही हों पुराने राजे ताकत अपनी तानाशाही करके होंगे सन अजोके युग के राजे जो असी चुन के वोटा राही बना के भेजते हैं वह साढ़े तो ताकत अपनी मन मर्जी की चला अपने देश वाल अखा झाती मार के वेख लो देश का जवान देश के राखे उन्हों की बनी सरकार उन्होंने छलिया वगू कुटती है इदा मारती है जिमें धरती के कीड़े मकौड़े हो वाकई सचमुच के काकरोच ने तो शायद उन्होंने पीती कुट वेख के साढ़े अंदर
ਉਸ ਤਾਕਤਮਈ ਰਾਕਸ਼ਸ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਭੁੱਖ, ਲਾਲਚ, ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਵਾਪਣ, ਹਉਮੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।